0: गुड मॉर्निंग सुपर सुप्रभात छत्रपति संभाजी नगर कस्का मग एकदम मस्त मस्त आतना मुस्कान की चमक के साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और हो चुका है शुरू अपना शो जिसका नाम है आज की सुबह करा तो सुविचार बहुत ही बेहतरीन है। आज के शो का आगाज करते हैं तो महात्मा गांधी जी जिन्होंने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सोचिए कितनी आसान और गहरी बात है ना कि अक्सर हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो बदलेंगे वो सुधरेंगे लेकिन शुरुआत तो हमें खुद से करनी होती है ना। अगर हम चाहते हैं कि समाज साफ सुथरा हो तो हमें अपने आस पास सफाई रखनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से प्यार से पेश आए तो हमें खुद अपनी बातचीत में मिठास लानी होगी। तो दोस्तों आज की इस नई सुबह में चलिए एक छोटा सा बदलाव अपने अंदर लाते हैं क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही मिलकर बड़ी क्रांति क्रिएट करते हैं। तो मुस्कुराइए और अपने इस नए दिन की शुरुआत कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ और सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

कभी कभी सोचा है जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है? एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ किस्सों का कारवा पे। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक लड़का था, इंटरव्यू देने गया था, बड़ा नर्वस था। ऑफिस पहुंचते उसकी शर्ट पर चाय गिर गई। उसने सोचा बस सब गया, इंटरव्यू में क्या ही इम्प्रेशन पड़ेगा। वो बहुत उदास हो गया था, लेकिन जैसे ही कमरे में गया, सामने बैठे इंटरव्यू ने हंसकर कहा, वाह आप तो बिल्कुल मेरी तरह हो, आज सुबह तो मेरी टाई भी कॉफ़ी में गिर गई थी। दोनों हंस पड़े और बातचीत इतनी नॉर्मल हुई कि उस दिन उसे नौकरी मिल गई। देखा, जिस चीज़ को उसने बैड लक समझा था वही तो उसकी स्ट्रेंथ बन गई थी। जिंदगी ऐसी है यार, हमें लगता है सब हमारे हिसाब से चलेगा, पर नहीं, लाइफ कभी कभी टर्न ले लेती है और अक्सर वही टर्न हमें हमारे ज़िंदगी के और करीब ले आता है। इसलिए याद रखो, जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस हर पल को जीना सीखो। कभी चाय गिरेगी, कभी प्लान टूटेंगे, लेकिन यकीन मानो ये सब भी आपकी कहानी को और खूबसूरत बनाएंगे। यही तो होती है अनप्रेडिक्टेबल जिंदगी। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सर आंखों पर आरजे अदनान तुम चल सो बता है इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम या वेज ना तर मी तुमची फरमाइश पूर्ण करत असतो क्योंकि यार जितना शो ये मेरा है उतना आपका भी है सो आप मुझे आपकी गानों की फरमाइश बताइए वो

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

38 करोड़ रुपया गया पानी में। जी हाँ, बात कुछ ऐसी हो रही है। You know what, अपने छत्रपति संभाजीनगर में ना तो नए स्मार्ट सिटी बसेस आने वाले हैं, ये तो हम सभी को पता चल ही गया होगा, 17 सितंबर से आएगी। लेकिन जो पुराने स्मार्ट सिटी बसेस हैं, जिनके ऊपर तकरीबन 38 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और उनकी हालत बद से बदतर होते हुए नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ना तो दौलताबाद घाट में एक स्मार्ट सिटी बस में आग लग गई थी चलते चलते, और रीजन क्या था, वक्त पर मेंटेनेंस नहीं होना। और अपने शहर में ना पूरे 100 स्मार्ट सिटी बसेस है, उसमें से बस 73 यानी कि 73 बसेस ही ऑन रोड चलती हुई दिखाई देती है, और 27 बसेस का इंजन खराब है। अब ये 27 बसेस का इंजन खराब है ये तो पता है, लेकिन 73 यानी कि 73 बसेस अभी सड़क पर चल रही है, उनका इंजन ठीक है या उनमें भी कुछ गड़बड़ है? उनमें से ये एक बस थी जिसमें ऐसी आग लगी थी, और ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी बसेस चलते चलते बंद होती है, किसी में आग लगती है। अब बहुत अहम कदम उठाया गया है और कहा गया है कि अब जितने भी स्मार्ट सिटी बसेस है ना, सबका मेंटेनेंस होगा और सबकी चेकिंग होगी, इंजन से लेकर टायर तक सब कुछ चेक किया जाएगा। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और वो कब होता है, जब कोई दुर्घटना होती है ना तभी लोगों की, प्रशासन की आंखें खुलती है। तो कुछ बड़ा हादसा ना हो उसके पहले अच्छा हुआ इनकी आंखें खुल गई, वरना लेट लतीफ तो आदत है ही। और हाँ, जो नए स्मार्ट सिटी बसेस आने वाले है ना, तो उनका तो वक्त पर मेंटेनेंस किया करो, नए नवेली दुल्हन जैसे 9 दिन मत रहो, हमेशा उसका मेंटेनेंस किया करो ताकि कोई हादसा ना हो, समझे? Stay tuned. Only on MGM 90.8 FM.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन फाइव, छत्रपति संभाजी नगर.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.

0: एक महीने में चौथा केस सामने आया अपने शहर में साइबर क्राइम का। हर दिन कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड अपने शहर में हो रहा है। बिजनेसमैन है, उसके अकाउंट से तकरीबन 50 लाख गायब हो गए। जी हाँ, एक गलती पूरा नुकसान करवा सकती है, और वो भी व्हाट्सएप के जरिए। सबसे पहले उनका व्हाट्सएप हैक किया गया, उसके बाद फिर बाकी चीजें प्रोसेस करते हुए उनके अकाउंट से 50 लाख गायब हो गए। इस वजह से जरा आप भी सेफ रहिएगा। आप सवाल उठता है कि सेफ कैसे रहना और व्हाट्सएप को सेफ कैसे रखना। देखो, बात सिंपल है। व्हाट्सएप का ना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिसमें 6 नंबर का एक पिन कोड आता है, वो डायल कीजिए। इससे टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरटीओ चालान, बिजली का बिल, पानी का बिल, क्यूआर कोड, ऐसे अननोन नंबर से आपके पास कुछ आ रहे होंगे मैसेज, तो या एपीके फाइल होगी, स्पेशली एपीके फाइल याद रखिएगा, वो डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर वो डाउनलोड करोगे तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और इसी के साथ, और व्हाट्सएप में जाकर ऑटो डाउनलोड वाली सेटिंग है ना, उसे ऑफ कीजिएगा, ताकि जो भी आपके पास ऐसे फाइल आ रहे हैं अननोन वाले, वो अपने आप डाउनलोड ना हो सके। और हाँ, किसी और के डिवाइस पर आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहे होगे तो उसे लॉग आउट कीजिएगा। एंड अननोन कंप्यूटर पर या अनजान इंसान के फोन, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर व्हाट्सएप लॉगिन मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो किसी को भी मत बताइएगा। ये बेसिक चीज है, अगर आपने इतनी भी फॉलो की ना, तो आपका व्हाट्सएप और आपका अकाउंट और आपका फोन सेफ रह सकता है। तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिएगा और साइबर फ्रॉड से बचिएगा, क्योंकि आपकी तो मेहनत की कमाई होती है, लेकिन सामने वाला एक झटके में पूरा उड़ा ले जाता है। और हाँ, अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को ये सब चीजें बताइए, तो उनके फोन पर भी, उनके व्हाट्सएप पर भी ऐसा कुछ मैसेज आया तो थोड़ा अलर्ट रहे। समझे? बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

वैसे क्रिकेट के फैंस तो सभी लोग हो गए ना, हर किसी को क्रिकेट पसंद है। हमने इंडिया के सामने ना तो दुनिया के सभी टीम्स को खेलते हुए देखा है, लेकिन कभी आपने जापान को खेलते देखा है? और अब इंडिया और जापान क्रिकेट के ग्राउंड पर पहली बार आमने सामने आने वाले हैं। सोचो जरा, जापान नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन, एनिमे, सुशी। लेकिन अब इस लिस्ट में क्रिकेट ऐड हो गया है। जी हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। 22 सितंबर को इंडिया और जापान के बीच हिस्टोरिक T20 मैच होने वाला है। और सबसे खास बात क्या है पता है? ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, इंडिया और जापान की डिप्लोमेटिक रिलेशन को 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं और उसी स्पेशल ओकेजन पर ये मुकाबला होने वाला है। मतलब 75 साल की दोस्ती और सेलिब्रेशन क्रिकेट के साथ, क्या बात है ना। और मुझे लगता है ना कि जापान के लिए ये मैच भी स्पेशल होने ही वाला है, क्योंकि सामने होगी इंडियन क्रिकेट टीम, जिसके अगेंस्ट खेलना ही अपने आप में एक बड़ा मोमेंट होता है। तो भाई अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जापान क्रिकेट के फील्ड पर इंडिया को कितना चैलेंज करता है। और हाँ, एक बात तो पक्की है, इंडिया वर्सेस जापान ये मुकाबला स्कोरबोर्ड से ज्यादा हिस्ट्री में याद रखा जाएगा और हमारे दिलों पर राज करेगा। सो 22 सितंबर को ये क्रिकेट मैच होने वाली है इंडिया वर्सेस जापान की, याद रखिएगा। Stay tuned. Only on MGM 90.8 FM.

0: IIM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर।

90.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप जब मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: शहरामध्ये घन आणि द्रव कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन केले जाईल आणि कचरा आणि सांडपाणी कुठेही साचणार नाही याची खात्री करावी लागेल.
1: पण यासाठी सरकार सोबतच समुदायाचा सहभाग देखील खूप महत्वाचा आहे. आमचा आवाज रेडिओद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे आणि तुम्ही लोकांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की एकही कुटुंब या मोहिमेतून वंचित राहणार नाही.
0: अरे पण मला हे माहित आहे की आतापर्यंत 5.67 लाखांहून अधिक गावांनी स्वतःला ODF प्लस घोषित केले आहे. त्यापैकी 4.81 लाखांहून अधिक गावांना ODF प्लस मॉडेल म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
1: देशात स्वच्छता राखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक घरात स्वच्छ पाणी पोहोचवण्यासाठी जल जीवन मिशन आणि हर घर नल योजनांचाही समावेश करण्यात आला आणि या महामोहिमेत आपला सहभाग कायम ठेवणे आमच्यासाठी आणि तुमच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. म्हणून तुमचा स्वतःचा रेडिओ ऐकत राहा आणि त्यात हा कार्यक्रम नक्की ऐका. आमचा आवाज आमचा संदेश प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचेल. पण सध्या तरी या सर्व गोष्टी सविस्तरपणे समजावून सांगण्यासाठी आपल्यासोबत आहे एक तज्ज्ञ.
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ. आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था. उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया. आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला. इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया. इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज. घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया. लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके. 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ. इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना. ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो. मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है. ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो. साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है. इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रखरखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है. इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है. और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें. तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आताच तज्ञांनी या सर्व गोष्टी तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे सांगितल्या आहेत, तुम्हाला त्या लक्षात ठेवाव्या लागतील आणि त्या तुमच्या क्षेत्रात अंमलात आणण्यासाठी तुमचे सहकार्य अपेक्षित आहे।
0: मी तुम्हाला एक मजेदार गोष्ट सांगू का सुजल? देशभरातील 100 कम्युनिटी रेडिओ द्वारे या कार्यक्रमाचा पहिला भाग ऐकल्यानंतर मी स्वच्छिका आणि तू सुजल दुषिका सह खूप प्रसिद्ध झालो आहोत।
1: खरंच ते कसं?
0: वेगवेगळ्या गावांमध्ये आमच्या पात्रांना पथनाट्यांद्वारे सादर केले जात आहे।
1: अरे कुठे?
0: चला मी तुम्हाला रामपूर गावाची कहाणी सांगते। तिथे पथनाट्य म्हणून काय सादर केले जात आहे ते मी तुम्हाला ऐकवते। तिथे एक नाटक सुरू आहे ज्याचे नाव आहे दुषिकाचा प्रभाव स्वच्छ भारताचा विजय।
1: दुषिका की प्रदूषिका?
0: बरोबर आहे सुजल, प्रदूषिका फक्त प्रदूषण पसरवते, ती दुषिका आहे जी प्रदूषिका सोबतच प्रत्येक ठिकाणी प्रदूषण करत राहते। आतापासून आपण तिला दुषिका असे म्हटले तरी योग्य ठरेल।
1: बरोबर,

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: feel me.
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM
4: साथ है

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन फाइव, छत्रपति संभाजी नगर.
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 937171 4265 or visit www.mgmu.ac.in.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी हमें अक्सर एक बात सिखाती है, सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम अपने दिल की बात कहने में देर कर देते हैं, किसी अपने को फोन करने में देर कर देते हैं या फिर किसी जरूरी फैसले को टालते रहते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि शायद हमें थोड़ा पहले कदम उठा लेना चाहिए था। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए जो बातें दिल में है उन्हें कह दीजिए। जिन लोगों की फिक्र करते हैं उन्हें अपनी अहमियत महसूस कराइए और जो सपने आपके दिल के करीब है उनकी तरफ आज एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। यही खूबसूरत एहसास हमें अगले गानों में भी सुनाई देता है। एक ऐसा गाना जो हमें याद दिलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रह जाए और वक्त निकल जाए। तो

आइए इसी प्यारे से मैसेज के साथ सुनते हैं एक अगला गाना, जिस गाने का नाम है कहीं फिर देर ना हो जाए। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार सिर्फ आराम करने का दिन नहीं है बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी एक मौका होता है। पूरे हफ्ते हम अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने स्किल्स पर ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन वीकेंड का थोड़ा सा समय अगर हम खुद को दें तो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। चाहे आपकी रुचि किसी नई भाषा में हो, कंप्यूटर स्किल्स में हो, पब्लिक स्पीकिंग में हो या फिर किसी क्रिएटिव काम में, शनिवार का दिन अपनी स्किल्स को ब्रशन अप करने के लिए बिल्कुल सही है। याद रखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना ही हमें आगे बढ़ाता है। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे कदम जरूर बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सीखिए या फिर अपनी पुरानी स्किल्स को और बेहतर बनाइए, क्योंकि खुद पर की गई मेहनत हमेशा सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। इसे पॉजिटिव सोच के साथ अब बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की तरफ। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट शो दिल से और एंजॉय कीजिए ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार की रात आ गई है और पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद अब थोड़ा रिलैक्स करने का समय है। मैं तो सोच रही हूं कि आज रात एक अच्छी सी मूवी देखने का प्लान बनाया जाए। आखिर कभी कभी खुद को रिफ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। काम जिम्मेदारियां और रोज़ की व्यस्तता के बीच अगर हम अपने लिए थोड़ा समय निकाल लें तो मन भी खुश रहता है और एनर्जी भी मिलती है हमें। मूवी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें हंसाती है, कुछ नया सिखाती है और कई बार ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका भी देती है। चाहे आपको कॉमेडी पसंद हो, रोमांस पसंद हो, एक्शन या फिर कोई फैमिली फिल्म, शनिवार की रात इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी तक अगर आपका कोई प्लान नहीं बना है तो क्यों ना एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ अपनी पसंदीदा मूवी लगा दी जाए और इसे खूबसूरत शाम को थोड़ा और ख़ास बनाया जाए। वीकेंड का असली मज़ा तभी है जब हम खुद को थोड़ा समय दें और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। इसी बात के साथ बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट शो दिल से और एंजॉय कीजिए शनिवार की शानदार रात। ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। ये बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज के दौर में जहां हर दिन नए गाने रिलीज होते हैं, वही पुराने गाने भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर थोड़ा समय बिताते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कई पुराने गाने आजकल फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उन गानों पर रील्स बना रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं और नई पीढ़ी भी उन्हीं धुनों को फिर उतना ही पसंद कर रही है। शायद पुराने गानों की यही खासियत है, उनके बोल, उनकी सादगी, उनकी मधुर धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती। साल बदल जाते हैं लेकिन अच्छे संगीत का जादू हमेशा बरकरार रहता है। कई बार जब कोई पुराना गाना अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है तो वो हमें हमारी पुरानी यादों में भी ले जाता है और जो लोग पहली बार उसे सुनते हैं वो भी उसके दीवाने हो जाते हैं। तो सच में ये बहुत खूबसूरत बात है कि संगीत हर जनरेशन को जोड़ने का काम करता है। पुराने गाने आज भी उतने ही ताजगी भरे लगते हैं जितने अपने समय में लगते थे। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एम जिम नारी पोनी डिफिल्म। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते ही देखते शनिवार की ये खूबसूरत शाम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने थोड़ा आराम किया होगा, आपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया होगा और हमारे साथ अच्छे संगीत का भी आनंद लिया है। हर शनिवार अपने साथ कुछ खास पल लेकर आता है, कुछ नई यादें, कुछ मुस्कुराहटें और आने वाले हफ्ते के लिए नई पॉजिटिव एनर्जी। और अब जब ये शाम विदा लेने जा रही है तो अपने साथ ढेर सारी प्यारी यादें छोड़कर जा रही है। कहते हैं हर खूबसूरत पल को अलविदा कहना पड़ता है ताकि एक नई और बेहतर शुरुआत हो सके। तो चलिए शनिवार के इस प्यारे से शाम को मुस्कुराते हुए गुड बाय कहते हैं और आने वाले रविवार का स्वागत करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों का आनंद लीजिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।

आपके साथ ये समय बिताकर बहुत ही अच्छा लगा। फिलहाल शनिवार की सुहानी शाम को गुड बाय कहते हैं और फिर मुलाकात होगी नई शाम, नई बातों और नए गानों के साथ। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है.

38 करोड़ रुपया गया पानी में। जी हाँ, बात कुछ ऐसी हो रही है। You know what, अपने छत्रपति संभाजीनगर में ना तो नए स्मार्ट सिटी बसेस आने वाले हैं, ये तो हम सभी को पता चल ही गया होगा, 17 सितंबर से आएगी। लेकिन जो पुराने स्मार्ट सिटी बसेस हैं, जिनके ऊपर तकरीबन 38 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और उनकी हालत बद से बदतर होते हुए नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ना तो दौलताबाद घाट में एक स्मार्ट सिटी बस में आग लग गई थी चलते चलते, और रीजन क्या था, वक्त पर मेंटेनेंस नहीं होना। और अपने शहर में ना पूरे 100 स्मार्ट सिटी बसेस है, उसमें से बस 73 यानी कि 73 बसेस ही ऑन रोड चलती हुई दिखाई देती है, और 27 बसेस का इंजन खराब है। अब ये 27 बसेस का इंजन खराब है ये तो पता है, लेकिन 73 यानी कि 73 बसेस अभी सड़क पर चल रही है, उनका इंजन ठीक है या उनमें भी कुछ गड़बड़ है? उनमें से ये एक बस थी जिसमें ऐसी आग लगी थी, और ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी बसेस चलते चलते बंद होती है, किसी में आग लगती है। अब बहुत अहम कदम उठाया गया है और कहा गया है कि अब जितने भी स्मार्ट सिटी बसेस है ना, सबका मेंटेनेंस होगा और सबकी चेकिंग होगी, इंजन से लेकर टायर तक सब कुछ चेक किया जाएगा। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और वो कब होता है, जब कोई दुर्घटना होती है ना तभी लोगों की, प्रशासन की आंखें खुलती है। तो कुछ बड़ा हादसा ना हो उसके पहले अच्छा हुआ इनकी आंखें खुल गई, वरना लेट लतीफ तो आदत है ही। और हाँ, जो नए स्मार्ट सिटी बसेस आने वाले है ना, तो उनका तो वक्त पर मेंटेनेंस किया करो, नए नवेली दुल्हन जैसे 9 दिन मत रहो, हमेशा उसका मेंटेनेंस किया करो ताकि कोई हादसा ना हो, समझे? Stay tuned. Only on MGM 90.8 FM.

एक महीने में चौथा केस सामने आया अपने शहर में साइबर क्राइम का। हर दिन कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड अपने शहर में हो रहा है। बिजनेसमैन है, उसके अकाउंट से तकरीबन 50 लाख गायब हो गए। जी हाँ, एक गलती पूरा नुकसान करवा सकती है, और वो भी व्हाट्सएप के जरिए। सबसे पहले उनका व्हाट्सएप हैक किया गया, उसके बाद फिर बाकी चीजें प्रोसेस करते हुए उनके अकाउंट से 50 लाख गायब हो गए। इस वजह से जरा आप भी सेफ रहिएगा। आप सवाल उठता है कि सेफ कैसे रहना और व्हाट्सएप को सेफ कैसे रखना। देखो, बात सिंपल है। व्हाट्सएप का ना 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिसमें 6 नंबर का एक पिन कोड आता है, वो डायल कीजिए। इससे 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन रहता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, RTO चलान, बिजली का बिल, पानी का बिल, QR कोड, ऐसे अननोन नंबर से आपके पास कुछ आ रहे होंगे मैसेज तो, या APK फाइल होगी, स्पेशली APK फाइल याद रखिएगा, वो डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर वो डाउनलोड करोगे तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और इसी के साथ, और व्हाट्सएप में जाकर ऑटो डाउनलोड वाली सेटिंग है ना, उसे ऑफ कीजिएगा, ताकि जो भी आपके पास ऐसे फाइल आ रहे हैं अननोन वाले, वो अपने आप डाउनलोड ना हो सके। और हाँ, किसी और के डिवाइस पर आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहे होंगे तो उसे लॉग आउट कीजिएगा, एंड अननोन कंप्यूटर पर या अनजान इंसान के फोन, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर व्हाट्सएप लॉग इन मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो ID पासवर्ड है वो किसी को भी मत बताइएगा। ये बेसिक चीज है, अगर आपने इतनी भी फॉलो की ना, तो आपका व्हाट्सएप और आपका अकाउंट और आपका फोन सेफ रह सकता है। तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिएगा और साइबर फ्रॉड से बचिएगा, क्योंकि आपकी तो मेहनत की कमाई होती है, लेकिन सामने वाला एक झटके में पूरा उड़ा ले जाता है। और हाँ, अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को ये सब चीजें बताइए, तो उनके फोन पर भी, उनके व्हाट्सएप पर भी ऐसा कुछ मैसेज आए तो थोड़ा अलर्ट रहे, समझे। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.

वैसे क्रिकेट के फैंस तो सभी लोग होंगे ना, हर किसी को क्रिकेट पसंद है। हमने इंडिया के सामने ना तो दुनिया के सभी टीम्स को खेलते हुए देखा है, लेकिन कभी आपने जापान को खेलते देखा है? और अब इंडिया और जापान क्रिकेट के ग्राउंड पर पहली बार आमने सामने आने वाले हैं। सोचो जरा, जापान नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन, एनिमे, सुशी। लेकिन अब इस लिस्ट में क्रिकेट ऐड हो गया है। जी हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। 22 सितंबर को इंडिया और जापान के बीच हिस्टोरिक T20 मैच होने वाला है। और सबसे खास बात क्या है पता है? ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, इंडिया और जापान की डिप्लोमेटिक रिलेशन को 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं और उसी स्पेशल ओकेजन पर ये मुकाबला होने वाला है। मतलब 75 साल की दोस्ती और सेलिब्रेशन क्रिकेट के साथ, क्या बात है ना। और मुझे लगता है ना कि जापान के लिए ये मैच भी स्पेशल होने ही वाला है, क्योंकि सामने होगी इंडियन क्रिकेट टीम, जिसके अगेंस्ट खेलना ही अपने आप में एक बड़ा मोमेंट होता है। तो भाई आप देखना, इंटरेस्टिंग होगा कि जापान क्रिकेट की फील्ड पर इंडिया को कितना चैलेंज करता है। और हाँ, एक बात तो पक्की है, इंडिया वर्सेस जापान ये मुकाबला स्कोरबोर्ड से ज्यादा हिस्ट्री में याद रखा जाएगा और हमारे दिलों पर राज करेगा। सो 22 सितंबर को ये क्रिकेट मैच होने वाली है इंडिया वर्सेस जापान की, याद रखिएगा। Stay tuned. Only on MGM 90.2.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
3: ये सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
4: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान.
3: यह है MGM 90.8 FM.
5: साथ है तो बात है.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है

0: रेंजर कैसा कूदे फांदे, कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे,
1: अपने दुम में बांधे।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।